इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, वन रुपीट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Ben ji.
1: हाँ जी,
2: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आपके घर में कोई नहीं है?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा। चुप,
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा है। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: तो उतार लीजिए।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ, सुसु करा। चुप,
1: उतार दीजिए, एक सेकंड।
2: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही
1: है।
2: क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला।
4: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot. Dila de ghar,
5: bana de ghar. Dila de ghar. Oh my God, this is original.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल, अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।
2: रख, रख।
3: मिर्ची फ्रेश माल।
4: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidu ala burga. Milci, burga.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
1: नहीं नहीं
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: वाला सा रंग तेरा, पावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
2: रख, रख।

0: Milci.
1: Buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vie est pas la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज से request करना चाहूँ. मैं आज सुन रहा हूँ वो singing, winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर, कुछ गाके सुनाएगा.
4: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कोंडा में कौन से गाने
4: है? सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा माने डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात मेरी. बात सुन पहले. बात
4: हाँ सर.
3: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है ये बंद कर.
4: सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Sid के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yep again
2: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
0: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: दोस्ती कहीं कुछ सुले मैडम नो सॉरी नो थैंक यू
3: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
4: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
5: खूब मिलेगा कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक व्हिच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: 96.
1: It's hot.
0: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La vizbala, murga. Milchi, murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहले आ रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी छोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। It's hot.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया। बॉलीवुड बोल डाल,
1: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमित त्रिवेदी, स्टूडियो है, गिटार है, माहौल है, रुके किस लिए हैं आप?
3: होने दो बतिया, होने दो बतिया, सीने में दिल, सॉरी वन मोर टेक प्लीज।
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी, हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: हाय शिवानी.
1: हाय
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा.
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी.
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
1: बदतमीजी
2: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
1: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
0: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
2: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Mirchi Helpline.
5: Yes, of course. मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
6: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
5: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
7: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirchi, burka. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Benji.
1: हाँ जी,
2: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आपके घर में कोई नहीं है?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा। चुप,
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: उतार लीजिए।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
2: हाँ, सुसु करा। चुप,
1: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही
1: है।
2: क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, उसका पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: इट्स पगला।

0: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM।

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
1: Stay tuned.
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
4: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: एलिगेंस एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग इनसाइड इज मी, इज लाइक अ मैड पर्सन, एंड आई लव मैड कॉमेडीज, एंड आई लव दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर लाइक लार्जर देन लाइफ। कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल, अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1.
7: It's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आगे हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
3: है
4: फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: How's the Josh?
8: Hi sir.
7: How's the Josh?
8: Hi sir.
9: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जब वो पहली बार सेट पे आई पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
2: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6
7: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं। बट आप लोग एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्चीशा और हम आ चुके हैं वीकेंड वाइब्स लेके आपको हफ्ते का पूरा हाल सुनाने की। कहाँ जा सकते हैं, क्या इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्या एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो। लेकिन हाँ, ये बातों में सच्चाई जरूर है कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम लोग गलत हैं। बट इट्स ओके, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम किसकी जिंदगी में गलत हैं और किसकी जिंदगी में सही। अपनी लाइफ एंजॉय करिए, किसी का बुरा ना चाहे, बस यही दो चीजें जो होती है ना लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। बाकी तो बस जिंदगी चल रही है और हम लोग चला रहे हैं। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शो अभी बाकी है गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ। बताती हूँ अभी थोड़ी ही देर में कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट
2: मिर्ची, फ्रेश माल।
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गा के
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश करूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सर बोलिए, हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात
2: जी सर?
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Morga. No wait, Kesat. Only on Mirchi. It's hot.
1: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
3: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। दोनों मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन। It's hot.

होता है, जब मेरी शादी हुई ना तो एक रस्म होती है हमारी शादी में कि जब लड़की को स्टेज पे बिठाया जाता है और बहुत सारी लेडीज आती हैं और श्रृंगार का सारा सामान उसकी गोद में रखती हैं एंड पैसे रखती हैं, मेकअप का सामान रखती हैं और जो चुन्नी होती है उसको सिर पे चढ़ा के मुंह मीठा करवाया जाता है। और आपको पता है उसको मुंह मीठा किससे करवाया जाता है? शवारे से। शवारे मतलब ड्राई डेट से। और ये ट्रेडिशन जो है ना श्वारा खिलाने का, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि वो जो ड्राई श्वारा है अगर दुल्हन ने या दुल्हे ने खाया और अगर उसके बाद कोई और उसका वो जूठा खाता है तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। बाकी होता क्या है ये नहीं पता, लेकिन हाँ उसको ही खिलाया जाता है जिसका नेक्स्ट नंबर होता है। कुछ ट्रेडिशंस जो होते हैं ना बड़े ही फनी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पर याशवारे से मुझे याद आया कि ये ड्राई डेट्स बहुत अमेजिंग होती हैं, हम बचपन में बहुत खाते थे। लेकिन हाँ अगर आप

ये सारी फार्मिंग होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू. अगर आप जाएंगे तो आपको और मजा आएगा. बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाला. इट्स हॉट.

अरे अरे अरे अरे, मैं बस जाने वाली थी, बट मैंने कहा शायद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है बतानी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप टॉय फेस्टिवल नहीं गए हो ना अभी तक, तो बस चंद दिन रह गए हैं। और ये टॉय फेस्टिवल ना हर साल एक बार आता है और एक महीने के लिए आता है, तो बेहतर है कि अगर आप नहीं गए हैं, बच्चों को अपना बचपना और अच्छे से व्यतीत करने का ये जो मौका मिलता है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा ले जाते थे मेला देखने, और हम बस वही झूलों में दो झूले गिन के होते थे हमारे नाम ये वो करके, हम उसमें ही खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए आता है बना बनाया प्लान, चाहे वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई प्लेइंग एरिया हो, चाहे वो तरह तरह के कुछ टास्क हो, ये सब चीजें आती हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो 31st तक ही है ये, जल्दी से बच्चों को लेके जाइए और एंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स अ

बच्चे ना बड़े ही लकी हैं, उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी को वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे, बस जाइए और इंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड साथ।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक व्हिच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot. 89.6, 89.6. Mirchi.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: कभी नोटिस किया है कि बचपन की ना सबसे खूबसूरत यादें वही होती थी जहाँ पे हमने सिर्फ खेला नहीं कुछ नया सीखा भी था। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे। जब समर कैंप होते थे ना तो उसमें एक एक पीरियड हर चीज का होता था। पहले वॉलीबॉल खेलने का टाइम होता था तब हम वॉलीबॉल खेलते थे खूब सारा एंड देन थोड़ी देर बाद ही ना साइंस का एक नया एक्सपेरिमेंट आ जाता था जिसमें अनियन पील करके उसमें आयोडीन का लिक्विड डाल के माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। उसके अलावा फिर अपने इमेजिनेशन के साथ नए रोबोट डिजाइन करते थे, कुछ क्राफ्ट का करते थे और शाम होते होते ना दोस्तों के साथ हंसी और यादें भी बना रहे होते थे। तो ये साइमल्टेनियसली चलता था। बस अगर आप चाहते कि आपके बच्चे भी नया स्किल कोई जाने, कोई नई एक्टिविटी सीखे, तो कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी इस समर लेके आया है आपके बच्चों के लिए एक ऐसा समर कैंप जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होने वाली हैं, क्लासेस, एक्टिविटीज। ये एंड ऑफ अगस्त तक रहेगा और ऐसे कैंप्स में ना बच्चे अच्छे से डिस्कवर कर पाते हैं कि व्हाट दे लाइक व्हाट दे डिसलाइक। तो बस अगर आप भी कहीं नहीं गए हैं और कतर में ही हैं तो अपने बच्चों को आज ही ज्वाइन करवाइए और स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता
2: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: तो सिर्फ
6: करें, हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के,
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के,
6: कम है के?
3: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

एक वक्त की बात है, हर बार जब कोई पुरानी बिल्डिंग गिराई जाती थी ना, तो उसका मलबा बस एक प्रॉब्लम बन जाता था। धूल मिट्टी वेस्ट को लेकर ना सिर चकराया जाता था कि भाई इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम लोग डाल देते हैं डंपिंग यार्ड में। लेकिन कतर ने इस कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। आजकल ने सोचा जिसे हम वेस्ट समझ रहे हैं वही तो कल की बिल्डिंग का फाउंडेशन बन सकता है। और बस 2022 से शुरू हुआ एक स्मार्ट सिस्टम जहां कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को रिसाइकल और रीयूज किया जाने लगा। आज नतीजा ये है कि लगभग 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर्स एक्सकेवेशन मटेरियल दोबारा से इस्तेमाल किया गया है और 3 लाख टन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट रिसाइकल हो चुका है। नाउ ये सोचने की बात है कि इसी को बोलते हैं स्मार्ट डिसीजन एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। सोचिए, जो पत्थर और मिट्टी कल तक बेकार लग रहे थे वो आज वही नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रहे हैं। सिर्फ वेस्ट कम नहीं हुआ है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से हमने यूज़ किए हैं एंड ऑल्सो इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एंड ये सिर्फ रिसाइकलिंग की कहानी नहीं है बल्कि सोच बदलने की कहानी है कि जहाँ वेस्ट को वैल्यू में बदला जा रहा है और शायद इसी को बोलते हैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर की शुरुआत। ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टेडियम विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अगर आपने मनी हाइस देखी है तो उसका सबसे स्टाइलिश और जो एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है ना, वो तो आपको याद ही होगा. यस, बर्लिन. और अब उसी कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी लेकर आया ना नेटफ्लिक्स, ओह माय गॉड, यू हैव टू सी इट. ये सीरीज जो है ना उस वक्त में ले जाती है जब बर्लिन अपनी लाइफ की सबसे एम्बिशियस हाइस्ट प्लान कर रहा होता है. लेकिन इस बार सिर्फ रॉबरी नहीं होती है बल्कि फ्रेंडशिप, लव, लॉयल्टी और बिट्रेयल का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिला है. हर एपिसोड में ना आपको एक स्मार्ट प्लानिंग दिखेगी, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखेंगे, आपको स्क्रीन से चिपक कर ही रहना पड़ेगा. सीरियसली मेरे को यही लगा, कल ही मैंने फिनिश की है ये और बहुत ही अमेजिंग सीरीज है. एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बर्लिन का जो कैरेक्टर है ना, ऑडियंस को इतना पसंद आया था कि मनी हाइस्ट खत्म होने के बाद ही उसके लिए एक अलग से स्पिन ऑफ सीरीज बनाई गई थी. और आपको इंटेलिजेंट क्राइम थ्रिलर्स और ये जो स्टाइलिश कैरेक्टर्स और सस्पेंस पसंद है ना, तो बर्लिन नेटफ्लिक्स पर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है. तो बस इस हफ्ते का प्लान बर्लिन बिंज वॉच और मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स 89.6 पे मैं शिवान. इट्स हार्ट.

0: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6

You know what? It made me realize that जिम्मेदारी की एक खूबी होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। जी हाँ, बिगड़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है एक एज के बाद कि आप उसमें इतना महफूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि कि बिगड़ना क्या होता है, आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि आप हर तरीके के कामों में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बच्चे हो, अपने बड़े हो, सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है। आप भी बहुत प्रेशियस हैं, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव एंड इट्स नॉट सेल्फिश, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपना ध्यान नहीं रखोगे तो घर का कैसे रखोगे, है ना, यही बोलते हैं ना। तो बस ये एक ऐसी लाइन है जो सब पे लागू होती है, घर का चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए ये लागू होती है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे आप सबका ध्यान कैसे रख पाओगे। तो बस इसी के साथ आज हमारा समय हो चुका है, जाने का हो चुका है टाइम। अब आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी आपको अगले वीकेंड इसी समय इसी वक्त और ढेर सारी बातें और इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, टाटा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye hain aap?
3: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
1: बार बार
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Har Friday Bollywood ke liye is a new start. Ek nayi kahani, lekin har kahani nayi yaad banke nahi rehti. Aur shayad isliye aaj hum ek ajeeb era mein jee rahe hain. Filmein bhi wapas aa rahi hain. कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है. अगस्त शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है. यू गॉट टॉक्सिक, यू गॉट आवारापन, यू गॉट बंटवारा 1947. तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे. इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन. एंड आई एम सुरेन सुंदरम.
4: नंबर 20.

0: a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और मजेदार बात ये है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: Girls Club. If you want to play, fall in line, little boy. Because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby. Because you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जॉब हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए ये तीनों गाने आज के नहीं है, दो दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन जिसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
2: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
1: अभी कॉल करें 3100813।
3: Why go outside to see a doctor when health care can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
5: Ja Simran, ja jee le apni zindagi. Ja beta, ja.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
7: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
11: नंबर 17।

ईरा में एक ऐसी आवाज होती है जिसके साथ हर नया सिंगर कंपेयर होना शुरू हो जाता है। कभी रफी साहब थे, कभी किशोर कुमार, फिर उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, और अब पिछले डेढ़ दशक से इट इज अरिजीत सिंह। इसलिए जब कॉकटेल 2 के प्रमोशन शुरू हुए और तुझको को स्टेज पर गाने की बारी आई तो अरिजीत तो वहां नहीं थे, लेकिन एक आवाज और थी, एक अलग आवाज, एक सिंगर जो अभी भी अपना सपना जी रहा है। नाम है सोनू इश्तियाक खान, और तुझको को गाने का रंग इनका बिल्कुल अलग था।

0: खूबसूरत। देखिए ये अरिजीत बनने की कोशिश नहीं है, ये एक सिंगर का अपना मौका ढूंढने की कोशिश है। शायद हर बड़े आर्टिस्ट की लेगेसी भी कुछ ऐसी ही होती है, वो सिर्फ अपने गाने नहीं छोड़ता, अपने बाद आने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड छोड़ जाता है। कौन जाने आज जिस सिंगर को हम स्टेज पर अरिजीत के गाने गाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कल उसके गाने कोई और गा रहा होगा। फिलहाल नंबर 16 पर The Hauntingly Beautiful, जाइए सजना by Jasmine Sandlas from Dhu Randhar।
1: नंबर 16

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
2: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
3: Dosti kai ko sule madam. No sorry, no thank you.
4: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
6: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.
9: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
10: Number 40.

एक वार्निंग है, इस गाने को अंडर एस्टिमेट मत करना। पहली बार सुनोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनोगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और तीसरी बार बस फिर ये गाना दिमाग से निकलेगा ही नहीं। और शायद इसलिए इसका नाम भी मदहोश है। टॉक्सिक का ब्रांड न्यू ट्रैक दैट डेब्यूज ऑन द चार्ट्स ऑन नंबर 14। लेकिन इस गाने ने मुझे एक और चीज रियलाइज करवाई। पिछले साल जब पूरा देश ये वाला गाना गा रहा था,

0: हम फहीम अब्दुल्ला की बात कर रहे थे, हम तनिष्क बागची की बात कर रहे थे, लेकिन एक नाम शोर के बीच कहीं दब गया, अरसलान निजामी। और अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से वाकिफ हैं तो मधोश सुनते ही आप समझ जाओगे ये उसी दुनिया का एक्सटेंशन लगता है, वही फील, वही एटमॉस्फेयर, वही म्यूजिकल डीएनए। और एक बात ने तो सच में दिल जीत लिया यार, फहीम अगर चाहता तो ये गाना खुद गा सकता था, लेकिन उसने सिद्धार्थ बसरूर को ये गाना दे दिया। एक आर्टिस्ट सच में तब और बड़ा बन जाता है जब उसे सिर्फ अपनी आवाज नहीं अपनी कॉम्पोजिशन की भी फिक्र होती है। और यकीन मानिए ये सिर्फ डेब्यू नहीं है, मुझे लगता है मधोश तो बस अभी शुरू हुआ है। लेकिन जो अगला गाना है वो उस फ्रेंचाइज से है जिसका इंतजार 19 सालों से हो रहा था, उस दुनिया में सब जाना चाहते थे, आवारापन की दुनिया। लेकिन पहला गाना उस गहराई तक नहीं ले जा पाया जिसकी शायद सबने उम्मीद की थी। द सॉन्ग दैट साउंड्स ईरली सिमिलर टू सैयारा, दिस इज वे जुनून बाय सुबोध शर्मा, म्यूजिक मिथुन का और लिरिक्स सईद कादरी भाई के। इस हफ्ते टू स्पॉट्स डाउन ऑन नंबर 13।
1: Really?

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नहीं बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: नंबर 12।
6: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

एक लिरिसिस्ट जब खाली कागज के सामने बैठता होगा या होगी तो उनके दिमाग में सबसे पहले गुलजार साहब वाले लफ्ज आते होंगे या शायद जावेद साहब वाली शायरी आती होगी। लेकिन फिर डायरेक्टर बोलता होगा, यार मुझे गाना चाहिए जिसका नाम हो इश्क कमीना, या शायद गाने का नाम होना चाहिए चटनी, और वहीं से असली क्रिएटिविटी शुरू होती होगी। क्योंकि मुश्किल खूबसूरत लफ्ज लिखना नहीं होता, मुश्किल होता है ऐसे लफ्ज को हिट बना देना जिसे किसी ने गाने में इमेजिन ही ना किया हो। सच बताइए, आपने कभी अपने प्यार का इजहार इस तरह किया है?

यार मैंने किसी लड़की को कभी नहीं बोला कि उसको देख के मेरा दिल डिंग डोंग करने लगा है। इनफैक्ट मैंने तो कभी किसी लड़की से ये बोलने की भी हिम्मत नहीं की।

देखिए ना, आज ये वर्ड सुनते ही डिक्शनरी या किचन याद नहीं आता, सीधा गाना याद आता है। शायद यही लिरिसिस्ट की असली जीत होती है। वो सिर्फ गाना नहीं लिखते, वो एक लव्स की आइडेंटिटी ही बदल देते हैं। और अगर ऐसी हिम्मत की बात हो रही है तो फिर एक गाना डेफिनेटली बनता है जिसके टाइटल को सुनकर लोग पहली बारी में शॉक हो गए थे, लेकिन जब गाना सुना तो गाना कल्ट बन गया। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ट्रैक भाग डीके बोस भाग, दिल्ली बेली से अमिताभ भट्टाचार्य जी को मेरा शत शत प्रणाम। स्पेशल

0: Train ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: बोल दामिनी बोल. बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है.
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं. और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
2: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे. तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे. सिंपल है.
3: खोपड़ी तोड़ दे.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an art like mere senior hai, but he's the only one I feel. And main har jagah sab bolta hu, yani egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आवारापन नंबर।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पर ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। जो आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 8.

0: टॉक्सिक का बस देख के एक बात तो तय है, अगस्त बॉलीवुड के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल महीना नहीं होने वाला है। एक तरफ यश 4 साल बाद केजीएफ के बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, दूसरी तरफ 19 साल बाद आवारापन अपनी कहानी आगे बढ़ा रही है। और फिर एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर देखते ही मुझे एक बात रियलाइज हुई, बंटवारा 1947 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी स्टोरी या उसका स्केल नहीं है, उसकी पार्टनरशिप है। आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, ए आर रहमान और जावेद साहब, द लगान, द जोधा अकबर डुओ, उनका कॉम्बिनेशन फिर एक साथ। लेकिन जिस रियूनियन ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया है वो है राजकुमार संतोषी और सनी देओल का रियूनियन। सनी देओल की सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस याद कीजिए, घायल, दामिनी, घातक, तीनों के पीछे एक ही डायरेक्टर थे, राजकुमार संतोषी। और ये तीनों फिल्में सिर्फ हिट्स नहीं थी, ये वो फिल्में थी जिन्होंने सनी देओल को सनी देओल बनाया। अरे यार, बॉर्डर और गदर तो काफी बाद में आए थी, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं फिल्म तो हमेशा हिट ही मिलती है, लेकिन सनी देओल का एक नया वर्जन भी मिलता है।
1: आप लोगों ने आई एम श्योर घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है, और अब बंटवारा आ रही है। राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझे कोई बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है, तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है और वी गेट एक्साइटेड, और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की व्हाइल वी आर वर्किंग। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं, इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है। That's a kind of cinema I love to do and have been doing.
0: बस इसलिए बंटवारा 1947 का इंतजार सिर्फ एक और फिल्म का इंतजार नहीं लगता, ऐसा लगता है कि हिंदी सिनेमा की एक लेजेंडरी जोड़ी फिर से अपना जादू दिखाने आ रही है। But right now, जादू है गुरु रंधावा का, जिनका गाना चार्ट्स पर नंबर 7 पर है इस हफ्ते। कहर फ्रॉम धमाल 4 इज हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
2: नंबर 7।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
12: Number 6.

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स। जब गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माई पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडर रेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा, वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, संग बाय माई ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ, तू है।

0: चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
3: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
10: नंबर 3।

पर दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहा थी ये स्टाइल था एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है. फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया उसे सिर्फ कमबैक नहीं ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर, इट्स स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गहरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
2: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ एक चीज लेनी होती है पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
3: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन का हारे। लेट्स गो।

खुशियाँ के मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे। अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में, फिर भी देखो लीवर मेरा वो दिख।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM Mirchi 1.
7: It's hot. How's the Josh?
8: High sir.
7: How's the Josh?
8: High sir.
3: Oh भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: FM Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
10: on a ride.
0: Club Mirchi.

हाँ लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा दोस्त हो तो जर्नी जरूर ब्यूटीफुल हो जाती है। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। इसीलिए तो है गाना गाने।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Nakhit wala murga.
3: Mirchi murga.
4: Hello,
5: Mr. Gotham.
4: कौन बोल रहे हैं
5: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
4: ऐसे कैसे बोल सकते हो जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
5: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: हाँ, कुछ कुछ

Welcome back, दोस्तों. Club Mirchi, DJ Richard and Mirchi Oyon Dega ke saath. This is the Friendship Day special. And school bench ho ya office desk, late night call ho ya morning calls, दोस्त हर phase में upgrade होते ही रहते हैं. तरसते हैं हम ऐसी friendship के लिए.

dance away your blues with Club Mirchi.

पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
4: मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
3: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: 89.6
6: Mirchi.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
6: On a ride.
0: Club Mirchi.

मेमोरी और सारी यारी फिर से रिवाइंड हो जाती है। दोस्ती के पल कभी नहीं बीतते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हम उसी दोस्त से रूबरू होते रहते हैं। क्लब मिर्ची विद डीजे विचरण मिर्ची और योंकिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
2: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
1: relative से advice लो तो कहते हैं
3: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो
7: ऑन अ राइड.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

हर गैंग का एक एंटरटेनर होता है जो सबका दिल लूट लेता है। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और मिर्ची ओयोंतिका, और उसके बिना ग्रुप इनकम्प्लीट है। कोई कहे कुछ भी कहता रहे, हम सब उस दोस्त के ही फैन है कि नहीं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका, ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
3: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
6: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
5: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
6: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
5: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
6: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
5: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
6: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
5: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: पहलवानी तो सिर्फ चोरे करें।
8: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना।

एक ऐसा दोस्त है जिसे कट्टी हो जाने पे भी भुला नहीं सकते. Cheers to that friendship club मिर्ची with DJ Richard and मिर्ची ओयोंतिका and best conversations उसी के साथ होती है जो 5 मिनट से शुरू होकर सनराइज तक चलती है, right? सुबह होने ही ना दे.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन,
7: इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
9: on a ride.
0: Club Mirchi.

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye hain aap?
4: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
3: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल्डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: goes on with Club Mochi.
1: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Hello, Benji.
2: Hi,
3: Benji. Ye, ek second. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आपके घर में कोई नहीं है?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटे। चुप,
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी, इसका
2: उतार लीजिए।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
3: हाँ, सुसु करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही
2: है।
3: क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
6: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
5: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
6: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
5: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
6: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
5: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
6: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
5: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई, गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned. Stay tuned.
2: यार, बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो.
2: क्यों? वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक.
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा.
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक.
2: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस.
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो.
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग. लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका. स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली. लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

की जा रही है. दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद मी मिर्ची और योंटिका एंड डीजे रिचर्ड. फ्रेंड्स ही वो लोग हैं जो आपकी वियर्डनेस सेलिब्रेट करते हैं. ऐसी दीवानगी

डांस स्टेप्स याद हो या ना हो, दोस्त साथ हो तो फ्लोर अपना है। जूते दो, पैसे लो और हमारे साथ नाचते रहो ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM
4: मिर्ची वन। इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार, उनसे समझ लो, जो रेड वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
6: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
5: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
6: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
5: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
6: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
5: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
6: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
5: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Dirt Sheet, only on Mix Sheet. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
4: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
6: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

बबली तो जरूर बदमाश है, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेकिन बाकी बातें बाद में। पहले एक और गाना चाहिए यार, दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Ritchie. It's hot.
3: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
4: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग करूँ, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
3: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

सनम तेरी कसम, गुड फ्रेंड्स आर लाइफ्स रेयरेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आपको एक सच्चा यार ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और एन मिर्ची और योंतिका।

आज अपनी गर्ल गैंग को टैग करना मत भूलना. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेलिब्रेटिंग एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप्स. गाने का नाम है वो मन लिया.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

नमस्ते दोस्तों, आज की पारी सिर्फ गानों की नहीं, उन लोगों की है जो फैमिली चॉइस से बनती है। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, जो बिना इनविटेशन के आ जाते हैं, बिना जजमेंट के सुनते हैं और बिना वजह साथ खड़े रहते हैं। फ्रेंडशिप डे स्पेशल में स्वागत है। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। शुरू करते हैं एक एवरग्रीन यारी एंथम के साथ। गाने का नाम है यार बिना चैन का हारे। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात,
3: मेरी बात
2: सुन, पहले बात सुन.
3: हाँ सर.
2: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर. बोलिए.
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

हाँ लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एक अच्छा दोस्त हो तो जर्नी जरूर ब्यूटीफुल हो जाती है। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका। इसीलिए तो है गाना, गाने का नाम है

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

दोस्तों क्लब मिर्ची डीजे रिचर्डन मिर्ची और यौन दिखा के साथ दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल एंड स्कूल बेंच हो या ऑफिस डेस्क लेट नाइट कॉल हो या मॉर्निंग कॉल्स दोस्त हर फेज में अपग्रेड होते ही रहते हैं तरसते हैं हम ऐसी फ्रेंडशिप के लिए

हाँ, दो पापी एक साथ मिल गए तो दोस्त बन जाते हैं। फ्रेंडशिप का रूल सिंपल है, एम्बेरस भी वही करेगा जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, राइट? आओ आओ टू दैट क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका बेबी।

Dance away your blues. Wake up, Mirchi.

पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए। कुत्ते दोस्त, कमीने दोस्त, आई लव यू वाले दोस्त, मासूम दोस्त, दोस्त जिनमें बहुत कीड़े होते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
4: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
3: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका विद यू एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
2: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

हर गैंग का एक एंटरटेनर होता है जो सबका दिल लूट लेता है, क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और मिर्ची और योंतिका, और उसके बिना ग्रुप इनकम्प्लीट है। कोई कहे कुछ भी कहता रहे, हम सब उस दोस्त के ही फैन है कि नहीं।

0: हेलो।
1: हाय शिवानी।
0: हाय
1: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
0: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
1: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
0: समाचार?
1: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
0: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
1: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
0: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
1: अच्छा।
0: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई थी।
1: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
0: आपको लेनी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
0: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
1: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
0: आप सिर्फ शोरूम में ले जा,
1: मेरी बात
0: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
1: ये सिर्फ 3
0: करता।
1: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
0: अपने सिर पे करवा ले
1: शिवानी।
0: हेलो,
1: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
0: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
0: नहीं नहीं
1: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
0: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1, It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go
5: on a ride.

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyon Tika. सबसे honest relationship जहाँ I'm fine बोलने पर भी दोस्त समझ जाए, वही तो है friendship, दिल से रे. Club Mirchi.

शादी हो जाने पे भी भुला नहीं सकते. Cheers to that friendship club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. And best conversations उसी के साथ होती है जो 5 मिनट से शुरू होकर सनराइज तक चलती है, right? सुबह होने ही ना दें.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: दोस्ती का कुछ सुले मैडम नो सॉरी नो थैंक यू
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
5: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
6: खूब मिलेगा
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट
9: लेडीज एंड जेंटलमैन We are gonna go! We are gonna go! We are gonna go!

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
4: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
3: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1.
10: It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go! We-

का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: एलर्जी हेल्पलाइन।
1: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
1: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: is on with Club Mirchi.
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: बहन जी।
2: हाँ जी।
3: ये एक सेकंड, ये बहन जी हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आपके घर में कोई नहीं है?
3: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
2: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
3: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटू, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
3: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए उसको।
3: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
3: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
3: हाँ सुसु करा। चुप,
2: उतार दीजिए।
3: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
3: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
3: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पागल।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM Mirchi 1.
7: It's hot. Ladies and gentlemen, we are gonna go.

फेस्टिवल क्लब मिर्ची जा रही है. दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद मी मिर्ची और योंटिका एंड डीजे रिचर्ड. फ्रेंड्स ही वो लोग हैं जो आपकी वियर्डनेस सेलिब्रेट करते हैं. ऐसी दीवानगी देखी नहीं गई.

डांस स्टेप्स याद हो या ना हो, दोस्त साथ हो तो फ्लोर अपना है। जूते दो, पैसे लो और हमारे साथ नाचते रहो ऑन क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: Yes, of course, Mirchi Helpline. बोलिए.
1: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
2: Oh my boy, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले को खोपड़ी तोड़, साले!

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। और हर इंसान को लाइफ में सिर्फ एक ऐसा बंधु जरूर मिलना चाहिए जो बस साथ रह जाए, नो कंडीशंस।

मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो है ना, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं मैं, सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
4: मैं कहाँ पर हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
5: मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
6: ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: She can already read what's on your mind. She knows what you are thinking. Coming soon. Stay tuned.
2: Stay tuned.
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

निकली तो जरूर बदमाश है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, लेकिन बाकी बातें बाद में। पहले एक और गाना चाहिए यार, दिस इज द फ्रेंडशिप डे स्पेशल।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
4: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल, अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
3: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

तेरी कसम गुड फ्रेंड्स आर लाइफ्स रेयरेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आपको एक सच्चा यार ना मिले तो जिंदगी बर्बाद। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और योंतिका।

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।